आण दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी।

प्रथम सनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नू सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होता। लोभ दा स्वभाव है कि पूरा होता ही नहीं, होता ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहता है, अधूरा ही रहता है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नू पूरे करन दे ए तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करने, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करने, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं।

0: तेरा मिट जाए। हाँ जी,
1: जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी।
0: रहनुमत हो जाती है, कृपा हो जाती है, पुरबले संजोग आते ने, वो प्रभु फिर तेरी बाणी नाल ही जुड़ते ने ते तेरे को ही मंगते ने। हाँ जी,
1: कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जियां दयाल।
0: हे प्रभु, जो तेरी दात है उदी की कीमत, वो सीमा दे च नहीं है, तेरा दिता होया सीमा दे च नहीं है, असीम है, असीम है। मैं ऐसा देखे अगर कोई अनुभवी कवि है तो वो भी कह देंदा है कविता दा अंत नहीं है, असीम है, असीम है। संगीत दा अंत नहीं है, असीम है, असीम है। ज्ञान दा अंत नहीं है, असीम है, अजीम है। ते हे परिपूर्ण परमात्मा, पदार्थां दा भी कोई अंत नहीं है, असीम ने, असीम ने। तू असीम है, तेरियां दातां भी असीम ने। हे परिपूर्ण परमात्मा, कौन कीमत पावे, कौन नापे, कौन तोले। तू मनुख नूं महान बना देंदा है क्योंकि तेरी दातां असीम ने, जिन्हां दा कोई मुल नहीं, कोई कीमत नहीं। हां जी,
1: सब किछ कीता तेरा वरता क्या हम बाल गोपाला।
0: हे परिपूर्ण परमात्मा, सब कुछ तेरी कृत है, असी ते तेरे बच्चे हां, तू साडा पालनहारा है, पिता दी तरह है, असी तेरे बारक हां। हां जी,
1: राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला।
0: लख गलतियां करदा है बच्चा, प्यो फिर भी कठोर नहीं आंदा, दया दे घर विच आके बच्चे नू गल नाल लांदा है, सारियां दातां जो है देना है। हे प्रभु, तेरे बच्चे आ सदीवी गल नाल राई रख, इस तरह साडी पालना कर जिवें शरीरक पिता अपने बच्चे की देख रेख करता है। हे प्रभु, हर वक्त अपने चरणा नाल जोड़ी रख, हर वक्त अपना प्यार बख्शी रख, ताकि असी हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहिए। इतनी सेवा प्रवान, काफी समा हो गया, बाकी विचारां कल। दूसरी बेनती है, कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनोपुर का ले, जिन्हां नाल दास का बड़ा पुराना प्यार सी, 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलता आया। बड़ियां खेड़ां मैं उन्हां दे नाल देखियां, उन्हां कोल देखियां, बड़े अनुभव। तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 बजे तो लैके 6 बजे तक का दीवान कल का कन्नूपुर काले सजेगा। दास दे नाल जिहड़ी 3-4 जथे आए हुए ने, प्रचारक आए हुए ने, कवि सज्जन ने, ये सारे उत्थे हाजरी भरणगे, ते दास भी 4 तो 5 उत्थे कथा जो है करेगा। सारी संगतां लई 2 बजे तो ही गुरु का लंगर चलदा रहेगा 6-7 बजे तक। तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है, जिन्हां कोल समा, वैसे कल इतवार है, ते बाबा जी दी तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां। जिन्हां ने जाना है वह गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी ले आणगियां। हुण जिन्हां दा शौक होवे वह 2 बजे इत्थे पहुंचण की कृपालता करन, बाबा जी दे ट्रक गड्डियां ते कारां बसां आ जाणगियां, वह संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस लै आणगियां। इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना। फुल सुग दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा,
2: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: महला पंजवा, मानुख बिन बूझे

ज्यों मृतक ओढ़ाया मानुख बिन बुझे व्यर्थ आया अनुख साज सीधार बहु करता ज्यों मृतक ओढ़ाया रहा ताए ताए कृपण श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा एक ही काज ना आया कारया भरण सवारी सिज्जा कामन थाट बनाया संग ना पायो अपने घर ते पेख पेख दुख पाया सारो दिनस माजूरी करता तो मुसला कराया

0: ایک نے دبی آواز ملیشیا چ مینوں کیا مسکین جی تسی کہندے سی نا سال بعد تے ہڈیاں بھی نہیں لبن گیاں ماس بھی نہیں لبے گا ہوں تے 25-30 سال ہو گئے واقعی ہڈیاں بھی کوئی نہیں ماس بھی پر اس طرح دے سنت پنجاب دے پوجے جا رہے ہیں صرف پنجاب دے بھارت دے کسے ہور پرانت دے چ نہیں تو مینو کہن دے منا اس طرح دے اندھ وشواسی سب تو زیادہ اتھے ہی رہے کسی پرانت دے چ نے اس واسطے گرو گرنتھ صاحب دے مقابلے چ اتنے گرو کلگی دردی دین نو ایک پاسے کر کے اپنی دین دے ہی جاندے نے اپنا بانا دے ہی جاندے نے اسی خاموش سب کچھ برداشت کری جاندے آواز اٹھانی پہ کلگی دھر دے روپ جو انہوں نے دیتا ہے بڑیاں قربانیاں بچیاں کی شہادت ہوئی ہے پتا دی شہادت ہوئی ہے انہوں نے کتنی ٹھوکرا کھا دیا نے یہ باڑا سانے دیتا ہے تو اس باڑے نو برباد کر اتروان اور اتروا رہے ہیں اور اسی برداشت کر رہے ہیں کیوں سنت جی شراپ دے دین گے ہوں میں کئی کہ ہوں تو سنت جی نہیں نہ شراب دین گے ہوں تو شیشے دے چ پائے ہوں تو قبر دے چ پائے ہوں تو نہ ڈرو ہوں تو وہ کی زندہ کرن گے سنت جی آپ ہی مر گئے پر نہیں لوکاں دا اندھ وشواس اس طرح کے مرے ہوئے سنتوں کی پھر قبراں پوجن گے مڑیاں پوجن گے پوجتے چلتا धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने मेरा सिख भूल के भी कदर में सजदा ना करे मड़ी में मत्था ना टेके पिछले साल मैं इतों टैक्सी की थी जलंधर जाना सी वापस आना सी जिहड़ा ड्राइवर सी उस टैक्सी ड्राइवर मैं वेख के बड़ा खुश होया मैं कि गात्रे किरपान है लंबा दाड़ है मैं कि चले एक गुरमुख है गुरमुख की अपनी वाइब्रेशन होंदी है मनमुख की अपनी वाइब्रेशन होंदी है इत्थों 10-15 किलोमीटर ही असि गए होवांगे पता नहीं एक दरगाह एक कबर आउंदी सी इत्थे खड़ी कर दिती गड्डी कहिंदा जैनी जी मैं इस मजार ते मत्था टेक के ना जावां ना मैं गड्डी नहीं चला सकदा मैं कहा मैं ते तेनू गुरु नानक का सिख समझिया से तेनू ते पता ही नहीं तू तो मड़िया का पुजारी कबर का पुजारी तू तो कबर का सिख है हर खेत दे कबर मिलेगी पंजाब ने इतनिया किधरे भी नहीं मिलनगी जितनी कबर की पूजा पंजाब दे च है किसी प्रांत दे च नहीं है ना बंगाल दे च है ना बिहार दे च है ना यूपी दे च है इत्थे है ते मैनू कह देना जितने मूर्ख इतने ने शायद बाकी प्रांत च नहीं कबर पूजन मड़िया पूजन पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न मने मेरा सिख भूल के भी ना मने मड़ी विच संत है तो फिर संत मर गया संत ते अपने घर जाता है संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए रोवो साकत बापरे जो हाटे आड़ बिकाए कबरों में वह होंगे ने मड़ियों च वह गए होंगे जो मर गए हैं अजे भी इतने ही भटकते पे ने जन्म लेने कि जो अपने घर चले गए अपने टिकाने से पहुंच गए वह कबर थोड़ी होंगे तो जिड़े हैनी कबर अजे हैनी इतने उन्होंने पूजा करने की की लोड़ है जीवदियां जी जिसकी सुरत परमात्मा नाल जुड़ी हुई है वह पूजनीक है कि जीवदिया जीवी जो मुरदे की तरह सी तो फिर उसकी मड़ी बन गई तो उसे में पूजे जाते हैं एक बहुत वड्डे पद्धर की अग्ञानता है महाराज इतने कहते हैं जितना हार सिंगार संवार तन में संवार शिंगार है और जितना बाल का अडंबर है यह सब इस तरह है जिमें मुरदे का शिंगार हो जिमें मुरदा शिंगारिया गया हाँ जी
1: ਰਹਾਲ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਫਰਮ ਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ
0: ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਰਪਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਾਗ ਹੈ ਤੋ ਕਿਰਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੋਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫਰਾਗ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ شاید دس من تو بھی ود کڈے تے اپنے سکھ تے بھی زیادہ خرچ کرے زیادہ خرچ کرے کرپن نہ اپنے سکھ تے خرچ کرتا ہے نہ پروار دیاں لوڑاں پوریاں کرتا ہے صرف دن دے امبار لاندا ہے کیونکہ دھن بھگوان دھن لئی محنت بڑی کرتا ہے مشقت بڑی کرتا ہے دھن ورتن لئی نہیں دھن جمع کرن لئی ایسا شون پھر دسمند نہیں کٹ سکتا فراغ دل نہیں ہے میں ایک دن پرارتھنا پڑھ رہا سی شیخ صاحب دی کہندے نے پرارتھنا وچ خدا پرگٹ ہویا ایسا شیخ سادی لکھ دیں تے خدا نے مینوں آکھیا میں کچھ دیواں او تیری لوڑ نہ ہوئے تو انج کر توں آپ ہی منگ لے تے میں تینوں دے دیا پتا شیخ سادی نے کی چوٹ کیتی ہے رب تے بھی چوٹ کیتی ہے کہندا ربا بھگتاں نوں تیرے سبھاؤ دا پتا ہے संसारी जो कुछ मंगते ने तू दे देना भगत तड़प तड़प के भी मंगते ने तू देना देना लंबी चौड़ी हकायत हकायत कहने ने कहानी नो तो हकायत बिच लिखता है रब ने यह आख्या फकीरा इल्जाम ते बाद मेरे करी तू दोषी ते मैनू बाद दे ठहरावे جب تو منگے تو میں دیوانا تو منگیا نہیں تو پہلے ہی میرے تے الزام لا دیتا ہے جو فقیر منگدے نے تو دیندا نہیں تے جو دنیا دار منگدے نے تو دینے نہ جھولیاں بھر دیندا جا جا پھر آپ ہی کہندا اگے فقیر کہندا دنیا داراں دیاں جھولیاں بھر جاندیاں نے وہ تیرا کھیڑا چھڈ دیندے نے تے انہاں وستواں نال فقیر تیرا کھیڑا چھڑ دے لے شاید تینوں فقیراں دی اصلیت دا پتہ ہے پھر کہیں تو فقیراں نوں نہیں دیندا فقیر جو کچھ منگدے نے نہیں دیندا تو خدا نے آکھیا ہوں لمبی چوڑی گل چھڈ ہن تو منگ تے میں تینوں دین لگا منگ اے شیخ صاحب دی منگدا ہے گلستان دا بول ہے کہ سفلا خدا بند ہستی مباش جو کمین بندہ ہے جو کرپن بندہ ہے جو ہوچھا بندہ ہے انہوں کدی چوٹی دا دھنوان نہ بنائے نہ بنائے انہوں لمبی چوڑی محل ماڑیاں پدارتھان دا مالک نہ بنائے جو کمین بندہ ہے ہوچھا بندہ ہے کرپن بندہ ہے شون بندہ ہے اے میرے مولا یہ بھی چوڑی کبھی بہتا دھن نہ پائیں صرف گزارا بات کہ سفلا خداوند ہستی مباش جوان مرد راتنگ دستی مباش تے جڑا فراغ دل ہے وہ دی جھولی ہر وقت بھری رکھی بھری رکھ شیخ صاحب کہندے نے میں منگیا تے خدا نے بوئے ہی بند کر دیتے چلا گیا کہندا اجے تک جواب دی اڈیق پیا کردا کبھی گردن تے کہندے نے تو اس واسطے بھگتاں نوں فقیراں نوں چوٹی دا دھناڈ نہیں بناندا کیونکہ گردر کہندے نے تو پربھو مینوں کدھرے کبیر بنا دیویں نا ونڈن والا یا بشنو دا عہدا دے دیویں تے میں تے سرے جڑے توں مٹھیا اور سیمت بھنڈارے دیتے نے میں تے وی خالی کر دینے تینوں ہور پانے پین تینوں ہور بھنڈارے بھرنے پین گے گردر تے انج کہندا چھوٹی دے دھناڑ سنت مہنت کدھرے پہ جانا سنت نے کرپن اکتر کری ہے مایا کرپا تے پھر لڑائیاں جھگڑائیں ہون گے گولیاں چلن گے اسی دن تے ایک ایک संत गुजर गए तो करोड़ करोड़ रुपया बैंक च पे आंदा फिर चेले लड़ते हैं झगड़ते हैं। मैं ऐसा देखे खैर महाराज कहने बड़ी तावना बड़ी मेहनत ये किरपन बड़ी मेहनत करता ये शौम बड़ी मेहनत करता है क्योंकि धन उसका भगवान है तो बड़ा धन इकट्ठा किया इसने बड़ी माया इकट्ठी की। हाँ जी
1: दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया
0: ना दसवंध कटदा ना दान ना पुन ना संतान की सेवा धन किसे काम नहीं आया किसे काम नहीं आया बस सिर्फ जमा करके ही रखे जमा करके ही रखे है ये किरपन इस तरह अपनी जिंदगी बतीत कर रहे हैं। हाँ जी
1: पारो आप फरन सवारी से जल काम काट बनाया
0: हूं एक होर उदाहरण दिता है मेरे पातशाह ने लक्ष्य न समझे बिना लक्ष्य प्राप्त किए बिना जीवन इस तरह है जिन्हें किसी सुहागण ने कामण ने तन बड़ा शिंगारिया है सेजा बड़ी शिंगारी है बड़ा भारी हार शिंगार किया है ते पति के घर रह कोई नहीं अक्सर स्त्रियां संसार में दिखाने वास्ते हार शिंगार कर दिया अजोका माहौल तो ऐसा हो गया इस तरह का हो गया वातावरण इस तरह का हो गया। इस संबंध एक घटना मैं याद आती है भगत कबीर का श्लोक है कबीर दे कोल कबीर दे चेले आए ते कहन लगे भगत जी शिवरात्रि का बड़ा वड्डा मेला लगे ते वेखण लई सिकंदर लोधी की बेगम भी आई है वह भी देख के गई है बड़े कीमती रथ दे च बैठ के आई पर जेड़े कपड़े उसने पाए सारे जर्रीदार ते उहदे च हीरे ते मोती जड़ कपड़ियां दे नीलम जड़ मोती जड़ ते सारा उहदे च जर्री दा कम जर्री कहिंदे ने सोने ने सोने दीआं तारां नाल सिलाई होई इतनी कीमती पोशाक ते कबीर कहिंदे ठीक है पर तुसीं कहना की चाहते हो कहिंदे कहना यह चाहते हैं जिहड़ी पनहारी है ना गंगा तो पानी भर के लियांदी है रोज ते सारा दिन सतसंगियां नूं पिलांदी है सारा दिन इहदे कपड़े पाटे होए लीरां लीरां कई थावां ते इसने सीते रब बड़ा अन्याय करदा है ये रब दे मार्ग ते चलण वाली स्वा स्वास नाम जपण वाली ये कपड़े ते तो सिकंदर लोदी जालम बादशाह ते फिर उसकी ये बेगम ये सिकंदर लोदी खुदा शनास नहीं तेरी बेगम कितों आनी तो दे कपड़े ये खुदा इंसाफ नहीं करता एक नू इतने कीमती कपड़े इतने कीमती कपड़े जो प्रभु दे मार्ग ते चल रही नहीं कि जो चल रही है प्रभु दे मार्ग ते उसकी यह हालत। इस संबंध में दो श्लोक भगत कबीर ने उच्चारण किए ने आप जी दे सामने रखा पहला कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार मन लेने छत्रपति बादशाह दी बेगम है स्त्री है उहदे घर हाथी ने घोड़े ने उहदे तन दे कपड़े बड़े कीमती ने विशाल ने कपड़े दे राही गुनाह है। कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार मनदे हां छत्रपति राजे की स्त्री है ये घर हाथी घोड़े ने सोना चांदी है नीलम है मोती ने हीरे ने बथेरा कुछ है और वो कपड़े बड़े कीमती ने सुंदर ने कबीर हैंगे बाहन सघन घर छत्रपति की नार पर तासो पुतन पर ना पूजे हर जन की पनिहार। वो जो हरि जन की पनहारी है सारा दिन हरि दे भगतां नूं पानी पिलांदी है, उहदे जिहड़े कपड़े ने उहदे सामने सिकंदर लोधी दी बेगम दे कपड़े कौड़ियों भी खोटे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुण चेले कहण लगे भगत जी असी थानू दस्या ना कपड़े जर्री नाल सिले हुए ने, जर्री दा कम है, नीलम ते मोती जड़त ने, हीरे जड़त ने, तुसी एवें ही कह दिता वह कपड़े कुछ नहीं और बेगम कुछ नहीं। ए पनहारी एदी महिमा गायन कर दिती, एदे चीतड़िया की महिमा गायन कर दिती। हुण कबीर दूसरे श्लोक च कहिंदे ने, सुनो मेरे को कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, मैं इस राजे की स्त्री नूं क्यों फंडिया, क्यों निंदा कीती, मैं इसनों क्यों फटकारिया, क्यों नीवा आख्या। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान। ये जो हरी दी चेली है, हरी दी पनहारन है, मैं इसनों मान क्यों देता है इतना, और उस पे फिटकार क्यों पाइए इतने। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे दिखे को ऐसे मरे हरी ना। उदे कीमती कपड़िया विच हंकार है, वाशना है, एदे चीथड़िया विच प्रभु दा नाम है, हरी दा नाम है। मैं इन्हां चीथड़िया नूं नमस्कार करदा, हरी दा नाम है। उत्थे ते हंकार है, नुमाइश है, वाशना है। इसनूं भगत कबीर जी इंज कहिंदे ने, वेद पढ़े पढ़ पंडित मूए रूप देख देख नारी। लोकी किस तरह अपना समा बतीत करते हैं, जिंदगी गवांदे हैं, बस वेद पढ़ते रह गए, वेदां दे विच जो कुछ है वह होने की कोशिश ना की। इन्हूं इकबाल कहिंदे ने, तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे हुआ है, साहिब दे किताब नहीं। फिर मैं पंक्तियां थोड़े सामने रखने लगा, फारसी नुमा उर्दू। तुझे किताब से फरोग नहीं के तू किताब हां है, साहिब दे किताब नहीं। तू किताब नू पढ़ने वाला है, किताब दे विच जो कुछ है वो तू नहीं है। तू कुरान नू पढ़ने वाला है, कुरान विच जो कुछ है वो तू नहीं। तू वेदां नू पढ़ने वाला है, वेदों के विच जो कुछ है वह तो नहीं। तू सिर्फ बाणी का पाठ करने वाला है, बाणी जिस दुनिया की गल कर दी है उस दुनिया का वासी तो नहीं, वो तेरे विच नहीं। मुर्गे पंडित सिर्फ वेद पढ़ पढ़ के वेदों विच जो कुछ है वह होने की कोशिश ही ना की। रूप देख देख नारी, बहुधा का शब्द वरते है। रूप पहले अपना देखना, शेष च बड़ा टाइम जाया करना, फिर दिखाना, इसे च स्त्रियां खप गई। कबीर इंज कह रहे, इसे च स्त्री जात खप गई, इसे च स्त्री जात ने अपना समा बर्बाद किया, इसे दे ची अपनी जिंदगी गवाई। रूप देख देख नारी, अपना रूप शीशे च देख देख के फिर जगत नू दिखा दिखा के जिंदगी बर्बाद की थी स्त्री ने, औरत ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बड़ा श्रृंगार किया, तन बड़ा संवारिया, कपड़े बड़े सुंदर पहने, गहना गट्टा बहुत, पति है कोई नहीं करते। तो हम कुछ सारा हार श्रृंगार कह दे रहे थे, होंगे ही पति नहीं। इतों ही पता चलता है ये बहुत कुछ दिखाने वास्ते होंगे, दिखाने वास्ते। मैं तो कई दफा ऐसा देखे घर दे डरावणिया जिया बनिया रहा, पर बाहर निकलन तो पता नहीं आसमान दिया परिया आ जा, मैं कह देना ये घर दे बोतणिया बनिया रहा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰੀ ਹੋਣਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤਣੀ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਬੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਪਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਕਬੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰਲਿਆ ਮਾਨੇ ਬਾਗ ਬਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਆਵਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਨ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਕੇਸ ਸਵਾਰੇ ਤਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਗਹਿਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਿਤਨਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ
1: ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ
0: ਕੋਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ

0: सारा संसार जल रहा है। गल स्पष्ट हो गई, दूरी है। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। गुरु नानक दी कोशिश जगत किसे तरीके नाल नेड़े होवे। तो नेड़े दा साधन आपने सच दा जप दसिया। गुरु नानक दी पहली बाणी दा नाम जप है। ते गुरु नानक दी मूल शिक्षा ते दीक्षा जप है। जो जप करदा जाएगा, जो उसका नाम अपनी जबान ते रख के रटन करदा जाएगा, नेड़े हो जाएगा। और जो नेड़े हो जाएगा वो प्रकाश दिच चला जाएगा। क्योंकि सच एक परम शक्ति है। ते जिहड़ा उस शक्ति दे नेड़े चला गया वह महान शक्तिमान हो जाएगा। जद मनुख किसे महान मनुख दे नेड़े हो जाता है, किसे हुक्मरान या राजे दे नेड़े हो जाता है, तो राजे दे नेड़े होने करके उसका भी सन्मान होता है। ते जो राजियां दे महाराजे परिपूर्ण परमात्मा दे नेड़े हो जाए तो कुदरती गल है, फिर सन्मान उसका भी होगा, प्रतिष्ठा उसकी भी होगी, महानता उसकी भी होगी। तो समगर पृथ्वी दे भ्रमण करके गुरु नानक दी कोशिश रही कि मनुख जप करके उस सच दे नेड़े होवे। ते जप ही शुभ कर्मां दे चों शुभ कर्म है, और जप ना करना ही अशुभ कर्म है। ते अशुभ कर्म नाल दूरी है, शुभ कर्म नाल नेड़ता है। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। गुरु नानक दा मूल संदेश उपदेश के मनुख उस सच दे नेड़े होवे, उस नूर दे नेड़े होवे, और आप दी दया, आप दी कृपा, आप दी प्रेरणा हर जीव नू यही रही भी किसे तरीके नाल जीव सच दे नेड़े होवे।
1: दृष्ट धरत तम हरन दहन अगपाप प्रनासन सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोवस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे। विसाख सुधी इक सम्मत 1561 बिकमरी मत्ते दी सरां जिला फिरोजपुर पंजाब दे अंदर एक ऐसी आत्मा दा जन्म होया जिसने बाद दिच दूसरा गुरु नानक कहलाया। गुरु नानक दे अंग लग के धन गुरु अंगद देव जी महाराज बने। पिता सुभाविक धार्मिक ख्यालां दे सन और देवी देवतावां दे उपाशक सन। पिता दी ही रंगत चढ़नी स्वभाविक सी, जैसे कि आम कहावत है कि बहुत कुछ पुत्र पिता तो लैंदा है। विरासत मिली ए धार्मिक परंपरा उसते मुताबिक आप भी गाहे बगाहे संगी साथियां दे नाल देवी दे दर्शना लई जांदे रहे। पिता फेरूमल माता सुबराई दानी सुभा सील संजमी ते परोपकारी सन। लोड़वंदी लोड़ पूरी करना अपना सुभाग समझदे सन, अपने आप नू धनभागी समझदे सन। ए सारे गुण माता पिता दे लहणा दे अंदर समाये हुए सन। उन्हां ने माता पिता दे इन्हां गुणां नू अपने विच परोया होया सी। एक दफा जद देवियां दे दर्शना नू अपने संगी साथियां दे समेत जा रहे सन तां कन्नां विच कुछ ऐसे बचन पए जिस विच धन गुरु नानक देव जी महाराज दा नाम आ रहा सी। आपने सुभाविक पुछिया इक किसते बचन ने, इन्हां बचना ने धूप आई है, इन्हां बचना ने खिचया। तां उस प्रेमी ने दस्या ए बचन

0: पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे।
1: गुरु रामदास जी महाराज रूहे जमीन ते महापुरुषां दी दुनिया विच अवतारी पुरुषां दी दुनिया च एक महान मनुख ने, एक पूर्ण पुरख ने। आप जी दा जन्म लाहौर चूना मंडी विच होया, सोडी हरदास जी दे घर। संसार दे अनेकां महापुरुषां दी तरह आप दा जन्म ते जीवन भी एक गरीब घराने विच बतीत होया। अजे 27 वर्यां दे सन के माता दा साया सिर तों उठ गया ते 2 साल बाद पिता दा साया भी सिर तों जांदा रहा। आप बिल्कुल यतीमी दी हालत विच हो गए तां बासर के नानकियां दे घर जाके पनाह ली, पर नानके भी घर दे कोई बहुते सौखे नहीं सन। लिहाजा नानी आप नूं घूणियां उबाल के दे दिंदी सी ते भाई जेठा जी धन गुरु रामदास जी महाराज बाल अवस्था विच इस तरह गली गलियां विच घूंघणियां वेच के अपनी उपजीविका चलांदे सन। अपने रिजक दी इस ढंग नाल ओ पालना करदे सन। सहजे सहजे आप वड्डे हुंदे गए, गरीबी ते संसार दीआं औकड़ां ने तरह तरह दे संघर्ष ते आप नूं मजबूर कीता। लेकिन संघर्ष एक ते बैरागी रुचि नूं जन्म देंदा है ते संघर्ष एक गिले ते शिकवियां दी बिरती नूं जन्म देंदा है। जद गिले ते शिकवियां दा जन्म होवे तां मनुख चोर या डाकू बन जांदा है। पर जे बैराग पैदा होवे कि जीवन कुछ भी नहीं, जगत कुछ भी नहीं सिवाय दुख दे, तो बैराग दा जन्म होंदा है ते बैराग दे नाल त्यागी बिरतियां उजागर होंदियां ने और उही प्रेम ते ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति दा कारण बनदियां ने, प्रभु मिलाप दा कारण बनदियां ने। आप जी दे अंदर सहजे सहजे जीवन दे संघर्ष ने बैराग पैदा कीता। बैराग ने आप नूं त्यागी बना दिता और त्याग में ही अवस्था दे छी आप अजे गली गली दे विचर रहे सन कि गुरु अमरदास जी महाराज की निगाह आप ते पई, क्योंकि बासर के तो बाद जेठा जी गोविंदवाल साहब विच आ गए सन। गुरु अमरदास जी महाराज की नजरां की पईआं, आप गुरु अमरदास जी महाराज दे ही बन के रह गए। कहावत है, इतिहास है कि गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ एक सियाणियां नूं कह रखिया सी कि बच्ची साड़ी सियाणी हो गई है भानी जी, असी इसलिए वर्दी तलाश दे चां। तो एक सियाणे ने कहा, महाराज चूंकि गल रस्ते च होई, उस सामने जो घूंघणियां वेचदा पिया इस वर्गा होवे तो सतगुर कहण लगे इस वर्गा तो फिर यही है, हुण यही ठीक है। तो आपने भाई जेठा जी नूं दामाद बना लिया और गुरु दी संगत सतसंगियां दा इकट्ठ इस सब कुछ ने सेवा भाव नूं जन्म दिता, प्रेमा भक्ति नूं जन्म दिता और हिरदा प्रेम रंग नाल रोज रोज रंगीन लग पिया। दिन प्रतिदिन अध्यात्मक मंडल दे उन्नति होण लगी। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज ने एक दिन गुरु रामदास जी महाराज नूं आख्या, भाई जेठा जी नूं, भाई तू दाद दे विच कुछ साथों मंगिया नहीं, जवाई मंग करदे ने, दामाद मंग करदे ने, तुसी ते कुछ भी नहीं मंगिया, मंगो। तो आप दी बड़ी सुंदर पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान मैं दाजो, हर कपड़ देवो हर शोभा देवो, जित सवरे मेरा काजो। हे मेरे गुरुदेव पिता,

कोई महान मनुख कोई महान संत अपनी कुर्बानी देवे देश दा धर्म बच सकता है। इन्हां झरनियां दी रवानी बच सकती है। इन्हां दरियावां दा वेग बचाया जा सकता है। गोबिंद राय हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज जे किसे महान पूर्ण पुरख दी कुर्बानी नाल ही ये सब कुछ बचदा है तां फिर आप तो महान कौन है ते आप ही बचाओ। खणावां पहन के गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज चल पे त्याग ते वैराग आप दे रोम रोम विच भरे होया है। हकीकत है बहुत वड्डी सच्चाई है कि वैराग तो बिना परमात्मा दी प्राप्ति नहीं अकाल पुरख दी प्राप्ति नहीं। वैरागी हिरदा ये महसूस करता है जगत कुछ भी नहीं है ये संसार कुछ भी नहीं है। ते जद संसार कुछ भी नहीं जगत कुछ भी नहीं वो फिर उदास रहेगा उपराम रहेगा। उपरामता ते उदास होना धार्मिक दुनिया का पहला लक्षण है और शुभ लक्षण है। जो जगत तो उदास नहीं होया उपराम नहीं होया वो परम जगत की प्राप्ति की चेष्टा भी नहीं करेगा। जो संसार तो उपराम नहीं होया वो निरंकार की प्राप्ति का उद्यम भी नहीं करेगा। यह हकीकत है जिहदे लई यह संसार सब कुछ है उसके लिए निरंकार सुपना है ते जिहदे लई यह संसार तुच्छ मात्र है सुपना है उहदे लई परमात्मा हकीकत है उहदे लई परमात्मा सच्चाई है। दो तरह के मनुख जगत विच मिलणगे किसे लई संसार सुपना है किसे लई निरंकार सुपना है किसे लई पदार्थ सुपना है ते किसे लई परमात्मा सुपना है। इंज कह लो संतां लई पदार्थ सुपना है ते आम संसारियां लई परमात्मा सुपना है। ते जो सुपना है उहदे नाल की जुड़ना जो सुपना है उहदे उत्ते की माण करना। तो कईयां दी दृष्टि विच परमात्मा सुपना है ते कईयां दी दृष्टि विच पदार्थ सुपना है। ते जद पदार्थ सुपना प्रतीत दिखाई दे जद संसार तुच्छ मात्र प्रतीत होवे तो उदास होना लाजमी है फिर उपराम होना लाजमी है। साढ़े देश दे साधु संत महात्मा कोशिश करते रहे कि अंदर उदासीनता का जन्म होवे बैरागी बिरतियां का जन्म होवे उपरामता का जन्म होवे किसे उजाड़ दे चले जाइए जंगल दे चले जाइए जिथे कोई मनुख ना होवे गलबात करन वाला जिथे चारों पासे वहशत ही वहशत होवे तनहाई ही तनहाई होवे ओ तनहाई ओ उजाड़ मन नु उपराम करे उदास करे ताकि निरंकार दी प्राप्ति अंदरों पैदा होवे ताकि ईश्वर दी प्राप्ति दी धुन ईश्वर प्राप्ति दी लगन अंदरों जन्म ले सके। आद काल तो साढ़े देश विच इस तरह दे लोग घर बार नु छड़ के बाजार महल माड़ियां नु छड़ के गोशा तनहाई पहाड़ां दियां कंदरां ते बयाबान जंगलां दे जांदे रहे मैज इस वास्ते कि उदासीन बिरती पैदा होवे उपराम बिरती अंदर उजागर होवे। गुरु नानक देव जी महाराज दे एक साहिबजादे दा नाम बाबा श्री चंद जिन्हां ने इस देश दे उदासीन परंपरा नूं जन्म दिता और आप दे साधुआं नूं उदासी साधु करके आख्या जांदा है। और ये उदासीन संपर्दा अज भी मौजूद है जिसने गुरबाणी दा महान प्रचार देश देशांतरां दे च कीता। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने कि उजाड़ विच जाके बयाबान जंगल विच जाके मन नूं उपराम करना है उदास करना है उस तो बेहतर है घर नूं ही जंगल समझ लिया जाए घर नूं ही उजाड़ समझ लिया जाए। रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सवै कर समझो मन ही माए उदासा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उपराम उदास ते बैराग दी मूर्ति सन। जगत विच कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नूं खिच लवे आप जगत तो उच्चे जीव दे सन लेकिन जगत तो बिरतियां उच्चियां हो सकन आपने जंगल विच जाना मुनासिब नहीं समझिया। आप साफ कहंदे ने काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वो जो व्यापक है वो जो

परम जीवन परम सुख रेत देचो तेल किथे। मंग ठीक है, मंग नू पूरे करन दे साधन गलत है, गलत है, गलत है। मनुख अपने साधना नू ठीक कर लवे, मंग होने ही पूरी। ऐसे वक्त, ऐसे वक्त लंबे चौड़े चकना च ना पैना। एक छिंदे च परम रस, एक छिंदे च परम आनंद, एक छिंदे च परम शक्ति, एको ही छिंदे च परम जीवन, एको ही छिंदे च परम धन। एक चित जय एक छिन दे आयो, काल भास के बीच ना आयो। एक छिन एक सैकंड संसार देच, एक सैकंड देच ते ऐसा कुछ भी प्राप्त करना कठिन है, पर एको ही सैकंड देच परमात्मा मिलता है। जिंदगी देच वो एक सैकंड आ जाए, एक छिन आ जाए, वो निमक आ जाए। निर्माण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत, निमक निमक एक सैकंड, निमक एक पल, निमक एक दम। सारी जिंदगी हो गई कीर्तन करदे हैं, पर प्रभु ते निमक कीर्तन नाल मिलता है। निमक निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। जद मनुख कहिंदा है और सोचदा है ना कीर्तन कीता, इतना कीर्तन सुनया होया ते कुछ नहीं, शायद गुरबाणी सानू तसल्ली दे रही है। विश्वास नहीं बनता, नेमक भरोसा नहीं बनता एक सैकंड। मैं फिर अर्ज करा, मैं एक एक कबूल कर लवा ते मैं कोई फोकी निर्माणता भी थोड़े अगो नहीं रख रहा। अंदाजन 50 साल दे नेड़े होण लगे गुरबाणी विचार संगतां नूं सुणांदे, मैनूं इन्नी समझ आई है मिलदा एक सैकंड दे च। इह गल वखरी है कि मेरी जिंदगी च उह सैकंड नहीं आया, नहीं आया। इह मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई फोकी निर्माणता तुहाडे सामने रख रहा, इस वास्ते कह रहा हूं कि एक सैकंड दे च आउणा बड़ा औखा है। इसे नूं गुरु नानक देव जी ने कह दिता है, आखण औखा साचा ना। ते की औखा है? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मैं चार दफा कह दिता है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण मैं होर कह दिता है, की होया? कोई औखिया ही नहीं। पर जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी कहिंदे ने आखण औखा साचा नाम, जिस आखण बारे गुरु नानक जी कहिंदे ने यकीन जानो जिंदगियां गल जांदियां ने, जन्म लंघ जांदे ने। वो एक दफा कहण दी, वो किछिन दे च आण दी जाच नहीं आ। मैं फिर अर्ज करा, 50 साल जो मैनु मिले हुए खेड़ एक सैकंड बनती है, जिंदगियां नहीं लगदिया, कई जन्म नहीं लगते। जोत दे च जोत होंदे हां, किरण नू सूरज होंदे हां, लहर नू सागर होंदे हां, एक सैकंड लगता, एक छिन लगता, एक पल लगता है, जिंदियां गल जांदियां। पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाते, खेड नहीं बनती। हुण इस नूं मैं खुलासा करके तुछ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा, किधरे प्रकरण फिर अज भी अधूरा ना रह जाए। परमात्मा है सूरज है, किरण है जीव आत्मा है, प्रकाश है किरण का मन है,

सुकहो टल गुरु सेविया अहन सुसहज सुखाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। हुआ सिपत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिरसां दा साहू। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहू। सतनाम वाहे गुरु साहिब जी। सूही महला तीजा। जुग चारे थान जे पवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम। निहचल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम। जुग चारे थन जे पवै बिन सतगुरु सुहाग ना होई राम। निहचल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम। तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई। गुरमुख एको जानिया धन पिर मेलावा हुआ। गुरमति मन मानिया सतगुर मिलिया तां हर पाया। बिन हर नावा मुक्त ना होई। नानक कामण कंता भाव। नानक कामण कंता रावे मन मानिया सुख होई। सतगुर सेव थन बालड़िए हर वर पावह सोई राम। सदा होवह सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझा कोई। हौ मैं मार पछाणिया करनी कार कमावा शब्द समावा। अंतर एको जानिया गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना। साची सुभा हुई नानक कामणु पिर रावे अपना। रव रहया प्रभ सुई गुर की कार करे थन बालड़िए। हर वर दे मिलाए राम। हर कै रंग रती है कामण मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरता सब थाई। सच्चा सीगार करे दिन राती कामण सच समाई। हर सुखदाता शब्द पछाता कामण लया कंठ लाए। नानक महले महल पछाण गुरमती हर पाए। सातन बाली थुर मेली मेरा प्रभ्याप मिलाई राम। गुरमती घट चानण हुआ प्रभ राव रहया सब थाई राम। प्रभ राव रहया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाए।

हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे होया। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप विच समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द प्रचलित हो गया। काम लोभ काम अहंकार ये कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सकया। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप ते ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंच दी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहिंदा है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाने ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरिया है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे ते उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उस ते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जायो, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचया सी कि जमीन दे मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोनार दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी,
और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच? कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखन जा रहे है। मनुख दे अंदर दी वासना इस नु मजबूर कर रही है, एक कोणार्क जांदा है। जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है और खजुराहे दे मंदर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं। मंदर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी दे इस युग दे ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया। हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दी तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है। अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नु इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दिच बह गया, काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया, घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैण किथे। कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे काम नरक विश्राम बहुजोनी भरमावणे, चित हरणं त्रैलोक गमन जप तप सील बेदारणे। हे काम तू कीते हुए जप नू, कीते हुए तप नू, शील नू भंग करन वाला है। ना तू संजम रहन देना है, ना तू शर्म रहन देना है, ना तू जप रहन देना है, ना तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन
ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਲ ਚਲ ਚਲ, ਇਤਨਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਕਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਮੀ ਮਹਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ ਦੀ ਭੇਟ। ਅਗਰ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਾਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜਾਨੀ ਭਰਮਾਵਣੇ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈਲੋਕ ਗਮੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ

उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे, दार्शनिक आणगे, विज्ञानक आणगे, संत आणगे, पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूतां नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नू काबू करना औखा सी, अजोकी औलाद नू काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नू मार रहे ने, तरह तरह के कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं, संजम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममयी नहीं हो सकिया, सिर्फ काममयी होके रह गया। पातशाह कहिंदे ने रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल, बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नू देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण ले निकलती है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे, और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नू वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा, हटदा जाएगा, हटदा जाएगा। अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, इसके अर्थ ने शिकारी, पुरुष शिकारी है, इसे शिकार की तलाश है, इसकी खोज यही है। कोई नगन शरीर देखण न मिले, नहीं मिल सकया, इतने पैसे नहीं कि थिएटर दे जाके किसी नगन स्त्री दे नृत्य नू वेखे, और अजे इतनी धनाड़ा दी महफिल भी इसनू नसीब ना होवे जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मां दे च ने, तस्वीरां दे च ने, मूर्तियां दे च ने, ओ वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रही ने, फैश नावल जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे, खूब पढ़े जा रहे, खूब पढ़ाए जा रहे। मनुख मानो बीमार होके रह गया है,
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

तान कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख दें दिए कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख दें दी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जदे मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा इत्थे मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये तो ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरिया है किवें मरिया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करता है। मां नूं पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नु दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इस नु दुध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦਸ ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟਨਾ, ਸੱਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ,

శుభకరం దృగవంతనుకో శృతవంతనుకో బదురో కరుడారం. జడి విచారకనే సూజవాన్ నే పాగల్ కరకే రఖ దయాగా హిలా దయాగా ఉనా ది సోచనీ నో హిలా దయాగా ఉనా ది విచార శక్తి నో ధృతవంతనుకో సో అధీర కరో और चातर की मत दूरने वारो धीरजवान नु सबरवान नु मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा. क्रोधी बहुत जल्दबाज होता है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होता है. धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे अपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त फिर दो सीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना. ऐ औरंगजेब कितना सुंदर लिखे है तेरे हम दीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर महान सूझवान दूरदृष्ट है. औरंगजेब चल तू मेरे बोला तो कुछ नहीं सीखा ना सीखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नु पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा. चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बद कार आहिर मना. कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा काम है. तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू. इसी जल्दबाजी दे प्यो नु कैद कीता, ब्राह्मण नु कतल कीता, भैण जहां आरा नु भी जेल दे पाया. और ऐ औरंगजेब तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमा दी जान ली. सरमद जैसे सूफी फकीर फिर मेरे मासूम लड़ ले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा. तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं. पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टता ही नहीं रहेगी. जितना सेना होवेगा मूर्ख हो जाएगा. धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो. हित कारज नाए पिखे कबही जिनके उर भीतर मैं पग धारूं.

0: परबल शक्ति जिसनू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़ झगड़े दा मूल क्रोध, झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है, ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है वर्ल्ड वार है मूल दे चाहे क्रोध है। हे झगड़े दी जड़ हे कलेश दा मूल,
1: हे कल मूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। बिखयंत जीवं वसं करोत नर्तं करोत जथा मरकटे।
0: हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर।
1: नर्तं करोत जथा मरकटे।
0: तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनूं इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नूं नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नूं नचाना है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जाना है।
1: अनेक सासन ताड़न्ते जमदूते तव संगे अधमं नरे।
0: जिस दे अंदर तेरा वासा हो जाता है उसनों जमजूतां दी ताड़ना सारनी पैंदी है, बार बार जमना पैंदा है, मरना पैंदा है। हे क्रोध तव संगे अधमं नरे। अधम गति दे लोग तेरे नाल आउंदे ने, अधम मनुख नीच मनुख तेरे नाल आउंदे ने। क्रोधी महान नहीं हो सकदा, क्रोधी महानीच है, महानीच है। तो फिर इस तो बचाव किस तरह करिए, इस क्रोध तो किवें बचिए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक सानू इंज उपदेश करदा है। आखरी पंक्ति

0: है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दीवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनू मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग देच चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करता है, विश्वासघात होता है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगती है। लोभी नू मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है। ज्यों कूकर हर काया धावे दै दिस जाए, लोभी जंत न जानई भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, करंग देच मुंह मारना, हड्डी देच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द देच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है।
1: इक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयाल।

लेकिन मनुख के अंतिशकरण की दुनिया है, मन की दुनिया, उस दे उते अगर अहंकार राज करे तो नीति विच व्यवहार विच जुलम बर्बाद हो जाता है। अहंकार का मतलब मैं हां तू नहीं है, अहं। अहंकारी किसी भी बराबरी नहीं देगा, अहंकारी हर एक नूं पैरां दे थले रखेगा। तू तो पैरां दे थले आण नूं राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरां दे थले लियांदी जाएगी। और जब बहुगिणती विच मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरां दे थले हुंदा है, अहंकारी दे पैरां दे थले हुंदा है। चारों पासे जुलम छा जांदा है। ऐसे दौर कई दफा लंघे ने जद सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां मजलूमां कमजोरां दे सिर ते उड़ाइयां गईयां गर्दना, लिताड़ियां गईयां गर्दना। जद मन दी सेजा दुते काम दा राज होवे, वासना दा राज होवे, और बहुगिणती विच मनुखता इस तरह दी हो जाए, तो दुराचार आम हो जाता है, सरेआम हो जाता है। किसी मुल्क विच अहंकार प्रधान होवेगा, जुलम ही जुलम होवेगा। किसी मुल्क विच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते, और सरेआम बाग बगीचियां। किसी वक्त भारत विच काम प्रधान मनुखता हो गई सी, रहिंदे ते पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होंदा है, वो कोई भी हो सकता है। अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है। और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार विच दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी। और धार्मिक मंदरां विच दुराचार, जिस दौर विच काम प्रधान हो गया सी भारत विच, उसे दौर विच कोणारक दे मंदर बने, खजुराहे दे मंदर बने, और इस तरह दे होर मंदर बने। ये सारे मंदर राम दे मंदर नहीं, काम दे मंदर ने। वासना दियां नगन मूर्तियां और वासना दे कृत रूप पत्थरां दियां गढ़ियां हुईयां मूर्तियां देखण लई देश विदेश तो दुनिया पहुंच दी है कोणार खजुराहा। बहुत वड्डी भीड़, ए वासना उस समय प्रदर्शित हुई सी, सरेआम हुई सी, नुमाइशी बन गई सी बाजार विच। बाजार ते की धर्म मंदरां विच, मंदर ही काम दे बने। और वाकई जद वासना ही प्रधान होवे तो फिर हर पासे दुराचार छा जाएगा, वो काबले कबूल हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। और ऐसी ऐसी क्रीड़ा होंदी रही इन्हां धार्मिक मंदरां विच, जिन्हों अल्फाजां विच अज दे समय बयान करना औखा है, जिन्हों सुनना सुनाना भी कठिन है। पर जे किधरे लोग प्रधान होवे, बहुगिणती दे च होवे, ताकत दे च होवे, तो पाप व्यापक हो जांदा है, छा जांदा है। पाप चारों पासे, बकौले गुरु नानक अज दे दौर विच मनुखी मन दे राज कर रहा है लोभ। लबे पाप दोए राजा मैता,

बह बह करे विचार। लब राजा है, लोभ राजा है, पाप वजीर आजम है। वजीर आजम राजे दे नाल है, पाप ते लोभ दे नाल है। जहां लोभ तहां पाप है, जिथे लोभ है उथे पाप है। लब पाप दो राजा में था, ए राजा ते वजीर ने। यही मनुख दे मन दे राज पे कर दें, लोभ पाप लोभ पाप लोभ पाप। फिर महाराज कहते कूड़ होआ सिख दास, चौधरी कौन झूठ कूड़। लोड़ भी नहीं तो देखे मनुख झूठ बोल रहे है, कूड़ बोल रहे है। और व्यापक पद्धर ते झूठ, झूठी राजनीति, झूठे परिवारक बोल, और झूठ ते ही खड़े हो गए धार्मिक बोल। सच दी कोई पहचान नहीं, संत कहलाण दा शौक है। मन कदी प्रभु विच लीन नहीं होया, लेकिन माला दो दो गल विच दो दो हथ विच प्रदर्शनी नुमाइश झूठ। धर्म दी दुनिया दे झूठ, राजनीति दे झूठ, परिवारिक दुनिया दे झूठ, ये चौधरी है। काम नेब सद पुछिए, जद कदी लोभ नू लोड़ पै जाए, पाप दुबदा विच पै जाए, कूड़ चौधरी किधरे कमजोर होण लग पै, तां काम ने सद पुछिए, इस नायब काम नू कामना नू बुला लिया जांदा है। बह बह करे विचार, लोभ विचार करदा है पाप नाल कूड़ नाल काम नाल। और काम ऐसी विचार दे देंदा है, लोभ भड़क उठता है। झूठ मदद करदा है, पाप अंग संग हो जांदा है। अंधी रैयते ज्ञान विहूणी, भाए भरे मुर्दार। अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता कौन मेरे ते राज कर रहे है, और लोभ मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, अकरण करोत अखादं खादं असाजं साज समझ्या। लोभी ओ कुछ करदा है जो नहीं करना चाहिदा, ओ खांदा है जो नहीं खाना चाहिदा, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।

0: अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणां दा सागर है, मनुख अवगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे अवगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे उंजते अनंत अवगण ने अनंत अवगण ने पर मूल कमजोरियां मूल अवगण मनुख दे पंज ने जिन्हां नूं इस तरह गणित देख लिया जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां अवगुणां नूं गुणा दे जमाना है। सतगुरु मोह तो आरंभ करते हैं। मोह मेरा मोह मेरा जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है उसे पकड़ नू कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए खराश लग जाए टूट भज जाए तड़प उठती है आत्मा चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं जिस विच पकड़ नहीं जिसका मोह नहीं चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए कल मिटदा अज मिट जाए कोई दुख नहीं कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है सारा घर उदास हो गया है। मोह है पकड़ है मेरा है लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पिया है कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं वो मेरा नहीं उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए नुकसान हो जाए आह निकल जाती है लेकिन बहुत बड़ियां किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं वो मेरा नहीं तो कोई आह नहीं निकलती कोई चीख नहीं निकलती कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटण का दुख है, इसी टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना होई तो जिसनु पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करदा है उतना ही मोह वध जांदा है, और जितना मोह वध जांदा है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह वध जांदा है, उतनी ही पकड़ वध जांदी है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है। जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है, बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते ने। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन 5-6 वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है, जो मेरा सी जिस विच मोह सी बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख धीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर पे दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है। आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दिया अखां रजदिया नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघ दे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मां नु बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या है, वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानू दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पी। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया, जैसे बूटे नु पानी ना दे कुमलान लग पैंदा है। मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया।
1: ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਕੇ ਬਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੀ ਮਾਂ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਪ, ਮੋਹ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਤੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਕਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਹ ਸੰਪਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੌਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਬੌਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
0: ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤੋ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਧਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਧਨ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪਗੜ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਕੁਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਕੜ। ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमण के रिचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकलिया है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आख्या है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख्या है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जांदा है, इसी ची मनुख तड़प के रह जांदा है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जांदा है, कठिन हो जांदा है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इत्थों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़ता नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, गैनी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड़ रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तो याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ते मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते हैं। बड़े सूरबीर ने मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है, मोह नू जित लैंदा है, प्रभु उस नू गलवकड़ी च लैंदा है, और वो जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पए, तां वी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर। जो करण हार करतार है समूह ब्रह्मंड दे बनाण वाला, उसनु ही समझ के मोह दा करता भी होई है। तू मोह नु सजदा ना कर, कृत नु सजदा ना कर, करते नु सजदा कर। हर करण हार नमस्कारं सजदा कर प्रभु नु, हाथ जोड़ परमात्मा दे अगों, अरदास कर और आख तेरी शरण, तेरी शरण, शरण नानक जगदीश्वर। हे जगदीश, हे जगत दे मालिक, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। बचण दा केवल यही उपाव है। सिद्धे रूप दे मोह नाल युद्ध कठिन है, औखा है, मनुख दी बिसात तो परे दी गल है, मनुख दी पहुंच तो परे दी गल है। मोह मेरा, मोह मेरा कदी कदाई रूहे जमीन दे मनुखी दुनिया च ऐसे फुल खिड़दे ने जिन्हां विच निर्मोह दी सुगंध होंदी है। मोह दी बदबू नहीं, निर्मोह दी महक, मोह दा अंधकार नहीं, निर्मोह दा चानण,
मऊदी कठोरता नहीं, निर्मोदी दया, निर्मोही दी दया सीमित नहीं होती। मोह ग्रसे मनुख दी दया सीमित होती है, अपने बच्चों दी दया पड़ोसी दे बच्चों दी नहीं। मोह ग्रसे मनुख नो अपने बच्चे दे औगुण भी चंगे लगते ने, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी नहीं चंगे लगते। अपना क्रोध बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी दा सुंदर बालक भी चंगा नहीं लगता। मोह ग्रसे दी दया बहुत सीमित, मोह ग्रसे दा प्रेम बड़ा सीमित, मोह ग्रसे दी समझ बड़ी सीमित। मोह ग्रसा सीमा दे जींदा है, उसका असीम नाल कोई संबंध नहीं। बड़े बड़े शक्तिशाली महाबली कहलाण वाले भी इस मोह दी सीमा दी कैद तो आजाद ना हो सके। मुगल सम्राट मुगल आजम जनाब जलालुद्दीन अकबर अदकड़ जी उम्र विच इस दे घर औलाद हुई शाहजादा सलीम। पता नहीं कितने पीर फकीरां दी मजारां ते चढ़ावे चाड़दा रहा, चदरां चाड़दा रहा। धन गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार विच भी नंगे पैरी आया दर्शन करन लई, लेकिन दर्शन विच कामना सी एक बच्चे दी। भाग लगे समा पाके अदकड़ जई उम्र विच इस मुगल सम्राट दे घर सुंदर बालक दा जन्म होया, जिस दा नाम सलीम रखिया गया। काफी दिनों दा अकबर दा रुके होया मोह हड़ दी तरह वग उठया। और राज पाठ विच इतना ध्यान नहीं, बच्चे नाल खेडना खिडाना इस विच ध्यान बहुत। डुल डुल के अकबर दी ममता सलीम ते पै रही है, चुकदा है चुमदा है रखदा है वेखदा है खुश होंदा है प्रसन्न होंदा है। एक दिन सलीम गोद देच है, खादमा नौकरानी महिला दा फर्श साफ कर रही है, पोचा ला रही है। अकबर खादमा नु कहिंदा है, खादमा सलीम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विचारी खादमा नौकरानी की आखे, कहन लगी जहां पना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोहरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। अखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर, दोहां दियां झोलियां भर दियां। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं,
जा लब के लिया। हुकम मन खादमा चल पई, सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है, दबे हुए पैरां नाल तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धि अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है, इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चादर एक पासे की थी, चीथड़िया दे च लिपटिया होया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहता है, ए बच्चा किसका बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने फिक कर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगुणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेवैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई कोई मनुख प्रभु की शरण प्रकट, प्रभु का चिंतन करे, नाम दे गीत गांदिया गांदिया मोह दे पर्दे नूं परे सुटदा है, निर्मोह हो जांदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने, बाकी सारे का सारा पराया। इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे, पराया होवे, तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा, डर विच जीवेगा, दुख विच जीवेगा। इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है। सारा जगत अपना है, प्रेमी लई सारा संसार अपना है, तो निर्भय होके विचरदा है, आनंद नाल विचरदा है, सुख नाल रमण करदा है। सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है, निर्मोही असीम होंदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है। बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी, जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी, उसकी सोचनी छोटी, उसकी समझ छोटी, उसका सब कुछ छोटा। बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख, और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही, कोई सीमा नहीं।
परमात्मा की कोई सीमा नहीं, निर्मोही की कोई सीमा नहीं। साढ़े देश देच एक ऐसा भी पुरुष होया है, राजा सी, स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह, और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह, राजा निर्मोह। इतिहासक वार्ता है, एक ऋषि ने जब ये ना सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता, कठिन है, औखी गल है, तो परीक्षा ले चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ। जैसे महलां विच दाखिल होया है, राजे निर्मोह दी पटराणी मिली, और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोहग्रस है निर्मोही नहीं। राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी, और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता, आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी, मैं थोड़ी देर दे चावना। राणी नु ऋषि कहिंदा है, राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज। हे राजमाता, थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया, मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते। पर ए राणी, राजे निर्मोह दी राणी, उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी, मौत उच्ची हो गई सी। ऋषि नु कहन लगी, पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए। पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ गए दिस जाए। संसार एक वृक्ष की तरह है, कई इस दियां शाखा ने, कई मुल्क ने, कई इलाके ने, और संस्कारां ते प्रालवद वसो के संजोग वसो के इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नू चले जांदे ने। ऋषि, ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये भी रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है, तप साधना करदिया करदिया थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया है। राजसभा देच ऋषि दाखिल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी राजे ने,
ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਠਾਇਆ। ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਧਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਆਹੋ ਭਾਗ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ। ਰਾਜਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਖੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਵੀ। ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਨਿਰਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੰਤ ਜਨ ਦੱਸੋ। ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨ ਤੁਮਕੋ ਅਤੀ ਬਿਪਤ, ਪਲ ਪਲ ਘੜੀ ਘੜੀ, ਸੁਤ ਖਾਇਓ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜ ਨੇ,

असीते, काफी समय तो समझी बैठे हैं सरा है, एक आउंदा है एक जाऊंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। ये एक प्रभु की लीला समुची सरां दे आवागमन बने होया है और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गल ते नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुर अजीत सिंह नू तैयार कर दें, होर सिखा नू नहीं कहंदे किधरे, इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है, हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन,

हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है, नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नूं देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा, असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद।

मित्रंतयंत सतरंद्रनंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगणे

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनूं दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाण दी तेनूं जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने, जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गया है। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारारद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे, सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लेंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नु, जड़ चेतन सब नु अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसती है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लेंदा है, ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है, तो सारी अनेकता
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁਗਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਖਸਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਸ
ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हर्क सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवे कस्बे दे अंदर दाखल होंदे ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जब इस कस्बे दे आउंदा सी सारियां दी निगाह मेरे ते आज ये निगाह फिर गईया ने आज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है हैं इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनों पे वेख देने खैश जिस घर दे जाना सी गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछे उस बैरागी साधु तो ए जो नाल आए ने ए कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने सोना चोला पहने आया है मुखड़े ते शांति झलक दी है निर्माणता बिखर दी है रहस बिस्माद अखां दे विच है तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने दुखत होके कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन दे दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है खैर जद उस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दे खैर माफी मंगण लग पया कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे ते शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो एक घर वाले प्रभावित हो रहे ने इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वालिया ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन के दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या कर देने ज्ञानी ने रह गई इस चोले की गल ये चोला मेरा नहीं है मेरा नहीं है इस दे विच ही वो कह गया है मेरा है मेरा है मेरा खैर उस घर तो ज्यों निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी पर निकल गई है गल तू सहन कर ले बर्दाश्त कर ले हुण मैं नहीं कहांगा तीसरे घर गए आओ भगत होई बिठाए गए पर वो चोला
तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सवावक पूछ लिया संत जी ए नाल कौन आए ने ए केड़े संत ने तो हुण तारुफ करांदा है मेरे बाल सखा मित्र ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने ज्ञानी पुरुष ने पर रह गई इना कपड़िया दी गल इस चोले दी मैं इस दी गल नहीं करनी ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए कुटिया च पहुंचे इस मेहमान साधु ने इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है एले अपना चोला हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना तीन दफा तू उतरवाया तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नु छुपाएगा मां बाप गुणवान ने ते उन्हां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है उसनु भी हंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष होंदे ने हंकारी गुरु नु भी छुपांदे ने क्यों फिर मेरी मैं मेरा वडपना फिर किथे। तो ये मित्र नु छुपांदे ने पुत्र नु छुपांदे ने अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने सिर्फ अपने आप नु ही अग्गे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है रब नु भी पिछे सुटिए परमात्मा नु भी पिछे सुटिए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश की थी सी नमरूद ने कह दिता सी कौन होंदा है खुदा मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकदा। अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है बकरे दे बोल नु अग्गे करके ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं। इसे नु आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है फखर

उस आंत बेचो सोटे दी जरब नाल निकल रहे है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखा दी कदमा नु खाक दे अपने मस्तक नु रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तुम देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होंदा है अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी तीसरे दी मित्र दी तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है गल नूं छुटियाना और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल देच उस नालों अग्गे होवे गुण देच कला देच ज्ञान देच शील संजम देच या फिर प्रभु दी बंदगी देच या संसारी तल ते ले लो सता देच धन देच स्वप्न देच किसे भी पख तो जो अग्गे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नो सच नहीं कहेगा। अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है लेकिन अहंकारी ब्राह्मणा

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए, भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाद रोग है, किसे वैद कोल इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसदे कोल, बस परमात्मा दा नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इत औषधि हो गई, मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवे मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नु वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नु घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन

जी महाराज का यह फरमान ए वाक प्रेरणा दे रहा है। जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर।

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु की बाणी का फरमान हुण काल का जाल सानू वेख नहीं सकता। काल की फाई साढ़े ते पै नहीं सकती। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पे, असी सच का पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे चे, मनुख समय दे बंधन दे चे, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और ये सब कुछ मनुख काल दे जाल दे फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे चे। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मोड़े कवन गुने। ऐ मूर्ख किमें छुटेंगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे है जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल विच फरिया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नु तड़प रहा है, रात नु तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत का धार्मिक अध्ययन करता, धर्म की गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा की दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दिया तीन धारावां मनिया ने समय नो तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत भविष्य वर्तमान, माजी हाल मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दिया इन्हां ही तीन धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा तो किथे चला गया, चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड दे, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति पशु पक्षी सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया जिसनु मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छा, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख सदीवी विश्राम, ओह ते मंजिल ते लभना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नूं बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नूं नापिए तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, ये इस छोटी जिही जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समां चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनूं कहिंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नूं किस तरह नापीए। असीम है
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवंदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघे उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां ने। जो समा आण वाला है उदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापते ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम, यह एक दम जो मोह दे चै नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंघ गए, उते वर्त लै उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है ओही दम जो मूह दे च है। यकदम बहेशरा न बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगां चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। एक दम जो नकद से इन मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आण वाले दमा दी चिंता च। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आया। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے میں مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاک مکونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی انہاں دا فرمان، ورتمان وچ ورتدا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچا اٹھ گیا، یہ سنسار تو اچا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا، دو مٹ گئے، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منکھ یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں. بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبو ہی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دیشتے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دیشتے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دیشتے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے، وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال تے بھوش، ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے نے، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کرتے جا رہے نے. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات ایک جال بن کے منک نو فسا رہے نے. جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے، دستے سہی کیوں چھٹے گا اس جال تو.
सतगुर की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे च है, सच ते एक सैकंड दे च है, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंग गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहिंदे ने, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया है। समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया है। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमा दा थे मरदाने नू भरोसा है, इतने दम तो मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदा है पातशाह, मरदाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं ते इक्को ही कदम दे भरोसे जी रहा। एक कदम जो पुटे है, पता नहीं दूसरा कदम पुट सकांगे ते नहीं। तो 3-4 दमा दा भरोसा। समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवे हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नो, पातशाह थानू किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदमी मोहलत मौत न जाना। एकदम जो मुंह दे च है बस इसे ते यकीन है, इन्ना एक भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दे डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दे डिग गया मन मिट गया, विचार खो गए, उथे एक नू प्रगट होण लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नू प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है, और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक,
विष्णु जैसा महान सतोगुण, शिवजी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे, अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखे अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दिया यादां विच नहीं। इसनू मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। इसने उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ते बेहाल है। इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहे, मुस्तकबिल दी फिकर दे जी रहे, इते भूतकाल दी यादां दे जी रहे, इते माजी दी यादां दे जी रहे। ये वर्तमान दिच नहीं, ये हाल दिच नहीं, और जो हाल दिच नहीं परेशान च कहंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत दिच, ईरान अफगानिस्तान दिच पुछिया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान दिच है कि नहीं, एक प्रभु दिच है कि नहीं, कि दो दिच जी रहे हैं। सपना है जिन्ने देर तक चल रहे है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दे मिट गया। है नहीं है, नहीं है है, स्वप्न है, स्वप्न देच मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था देच मनुख करे। स्वप्न देच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनती है जो जागृत देच। स्वप्न देच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनती है जो जागृत अवस्था देच। पर स्वप्न देच मिलाप होया है, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आती है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वप्न इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहने नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वप्न अवस्था विच नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था विच जो संसार है वो जागृत अवस्था विच नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वो स्वप्न अवस्था विच विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था दे संसार है वो जागृत विच खत्म हो जाता है। तो हुण किसनू सत कहिए ते किसनू मित कहिए, किसनू कहिए है ते किसनू कहिए नहीं है,
ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਾਦ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਖੋਏ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਸੁਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨ ਚੱਲਦਾ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਐ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਤੂੰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਪ ਭਰਿਆ ਸੁਪਨ, ਸੁਖ ਭਰਾ ਸੁਪਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਸੁਪਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉੱਠਣ ਉਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ, ਹੌਕੇ ਨੇ ਤੋ ਹੌਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ
चौ जुगे समाने रैण भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगा वर्गे हो गए, नहीं लंघदे नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा लखां साल वर्गा नहीं लंघदे। इन्ना लंबा हो गया कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने रैण भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगा वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत नु इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतीश जैसे विचारक ने कह देता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नू दस दिया तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनू 4 साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नू मनिया नहीं, इसे गुनाह करके वो मैनू हमेशा लई नरक, हमेशा लई। और ऐसा नरक जिथे जंबूरां नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दलदल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ए विचारक कहिंदा है फिर उस खुदा नू रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है। ते बहुत सख्त है, ते बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा है, नहीं लंघदा नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे एक क्षण देच एक दम देच भूत खो गया, भविष्य खो गया, अकाल प्रगट हो गया, काल ते खत्म हो गया। लेकिन बहु गिनती मनुखी दुनिया दी काल देच जी रही है। मनुख दे कोल सिमरति है, इस सिमरति कदी अगे जांदी है, कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी। इह किस तरह मिटे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहा है। भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा बहुत लंबा। चिंतत ही दी से सब को है, सारी चिंता विच दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलणगे, उन्हां नूं भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य दी चिंता दे। जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है,
भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इस नुचेत है, गुजरिया हुआ कल कैसे सी, गुजरिया हुआ साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने आने वाला कल किस तरह होवेगा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल की जब जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादा नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी की सिमरती ये शक्ति ज्यादा होती है, इस जन्म की दीवार नु तोड़ के अगले जन्मां च भी पहुंच जाती है, पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादा मासी दिया भूतकाल दिया यही बोझ मनुख ढो रहे, इसी बोझ दे थले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरदा है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमी आप दे कन्ना विच होकियां दी आवाज पई, जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए थे नंद लाल, नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है, गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमां ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है, हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, 10 क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है। तो नंद लाल सोचदे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पादशाह मैं शायर हां कवि हां आप दा अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी प्रवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी प्रवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है। चल तू अपने तखयल दे आधार ते कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है, रंगश कबूद कर दिले अज पुरश औरार साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे बादशाह मेरे तड़पे हिरदे चो जड़े होके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। पादशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले तो जी रहे हैं, अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन, काल खत्म हो गए अकाल प्रकट हो गया, अकाल महा आनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है, काल भूतकाल दियां यादां ने, पर अकाल ना भूतकाल दियां यादां ना भविष्य दियां चिंतावां, परम आनंद प्रगट हो गया, अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहिंदे ने
दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारे हो, वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकता है, जो भविष्य दियां चिंतावां दे डुबिया होया है उसनों किवें सियाणा आख्या जा सकता है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे जी रहा है, अकाल दे जी रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी के सतगुरां दी बाणी फरमान कर दी है, काल जाल जम जो हो न साके सच का पंथा ठाठ्यो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, अकाल है अजाल है, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल, समस्यावां ते भविष्यां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईयां सारियां समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें, अकाल दी याद काल नु मिटा के रख देंदी है, अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके सच का पंथा ठाठ्यो।

0: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे
1: गुरु रूप सत्संग जियो फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के कामी तू की है मैं की हां यदि वजाहत भगत सिरमौर श्री रविदास जी बयान कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल युग के कामी इस युग देच मनुख दा जेड़ा औगुण प्रधान है उसका जिक्र पै करते हर समय हर युग देच एक औगुण प्रधान आउंदा है ये मैं अर्ज कर दें। बाकी औगुण भी होंदे न वो जेर साया आउंदे ने एक औगुण प्रधान आउंदा हर व्यक्ति देच बहु गिनती देच कोई तरह का औगण मनुखता दे अंदर प्रधान होवे 60-70 फीसदी दे अंदर उस नाल फिर तुलना की जाती है इस युग का औगण केड़ा है। हर युग का अपना गुण होंदा है हर युग का अपना औगण होंदा है हर व्यक्ति का भी बुनियादी गुण कोई एक अद आउंदा है बाकी गुण उहदे जेर साया आउंदे ने। हर व्यक्ति का बुनियादी औगुण एक होंदा है बाकी सारे औगुण उस एक औगुण दे पिछे चलदे ने। श्री रविदास ने जो इशारतन गल की थी है इनू जगत गुरु बाबा वकत दे अवतारी पुरश इस युग दे अवतारी पुरश धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस तरह खोलदे ने ये मैं थोड़े सामने रखा पूर्ण तौर पर उन्होंने बोलों नू मैं खोल सकांगा ये ते समर्था नहीं पर कुछ जो सतगुरु ने शक्ति ते प्रेरणा जिस तरह की प्रदान की थी मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा हूं। कल कल वाली काम मद जिन्होंने कदी सिलसिलावार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया ये आया होगा वाक श्लोक मरदाना पहला ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹੈ,

अगर दुनिया के विद्वान बैठ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल इंसाफ करन, इंसाफ करे जी में जमाना, तो यकीन है कह दे गुरु गोबिंद का स्वामी ही नहीं है, फिर इस नतीजे ते पहुंचन गे। ये अला यार खां दे अल्फाज ने। पर जब इस नू आख्या गया तू मुसलमान हो के ऐसा आखना है तो तेनू कोई लोभ दिता गया होगा या डरदा मारा कह रहे हैं। गुजरात के इलाके का रहने वाला सी, जिला गुजरात पंजाब दे जो रह गया लाहौर तो परे, पैदा मारिया होया कह रहा होगा या लोभ दा मारिया होया कह रहे हैं। तू गुरु गोबिंद सिंह बारे कहना है कि रूहे जमीन ते इस तरह का पुरुष नहीं होया, और मुसलमान होके लाजमी है कि तू खुशामद कर रहे हैं लोभ वस होके। पता है अगे इसने की आख्या है, अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। कहिंदा खुदा दी कसम मैं चुकदा, मैं जो कुछ कह रहे हैं ये मेरे फोके जज्बे नहीं है, मैं स्टडी की दी है, गुरु गोबिंद सिंह नु पढ़े है, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नु बात कह है। अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। मेरे हाथ दे जड़ी कलम है बाणिया दी कलम नहीं है, हिसाब किताब लिखण वाली शायर दी कलम है। नगमे निकलते ने, फिलसफा निकलता है, गीत निकलता है, गहराइयां निकलदिया ने। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। फिर भी मेरी इस कलम विच इतनी ताकत नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी बयान कर सके। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। एवं विचकार गल आ गई, जिन्होंने जाने वो पूर्ण तौर ते जना ना सके, जिन्होंने वेखे वो पूर्ण तौर ते विखा ना सके। जगत ने कह देता ए बोले हुए रहबर ने पागल ने, चाहे वह कबीर है, चाहे गुरु नानक, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी। किथे कबूल होए गुरु अर्जन देव जी, अगर कबूल होंगे तो तत्ती तवी ते ना होंगे। किथे कबूल होए गुरु तेग बहादुर साहब, मैं फिर अर्ज करा जो संत महंत अवतार समय की राजनीति नू कबूल हो जान, उस राजनीति तो उच्चे नहीं ने। जिहड़े संत महंत धार्मिक पुरुष उस समय के समाज जो है कबूल हो जान, उस तरह की समाजिक जिंदगी तो उच्चे नहीं ने। बस इतनी एक पहचान है, एक कसवटी है, एक पहचान है, ये उत्थे ही ने जिथे राजनीति है, उस तो उच्चे नहीं ने। ये उत्थे ही ने जिथे के समाज जी रहे। जबकि गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तो मैं अर्ज कर रहा सी एक बिरती पैदा होंदी है जिसनों कहते ना उदास बिरती, इसका खुलासा मैं कल थोड़े सामने करांगा। मैं वेख लिया वक्त काफी हो गया तो थानू बहुता लेट ना करिए, सवेरे आपने काम कारा ची जाना हों, आप एक घंटा कथा करनी है तो फिर वेले फिर खामा कर थानू सारे नू जो है एवं ना वेला करिए। कल फिर इस लड़ी नू अगां तोरांगे। उदास होए बिना परमात्मा की तलाश कठिन है, औखी है, नहीं हो सके। सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलय।

निरंजन शब्द रसना ते आ गया। जद ए देखिया कि उस दे च खेची नहीं, कशिश नहीं है, उस दे च संसार दी पकड़ उस दे च नहीं है, संसार दे च रहिंदा होया, संसार दी मोह ममता उस दे च नहीं, ता सुभावक शब्द निकलिया कृष्ण। जद ऐसा दिसिया कि उते करता है, कृत नहीं है, तो रसना दे चो निकलिया करतार। जद ऐसा प्रतीत होया उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वह तो एक परम शक्ति है, तो रसना दे चो स्वाभाविक नाम निकलिया निरंकार। ते जद ऐसा महसूस होया कि वह तो एक आश्चर्य रूप है, ते जिहड़ा उसके नेड़े जांदा है उसका अंधकार दूर होके उसनू प्रकाश मिलता है, उसनू चानना मिलता है, तो स्वाभाविक शब्द निकलिया वाहे गुरु। इसे तरीके नाल बोली दे आधार ते, मजहबां दे आधार ते, वख वख बनी हुई संस्कृति दे आधार ते, परमात्मा दे वख वख नाम संसार दे प्रगट होए और उहदे वख वख रूप दी चर्चा धर्म ग्रंथां दे च होई। इतनी गल स्पष्ट है कि हर बंदे कुल दृष्टि वख वख है और अपनी दृष्टि दे मुताबक ही मनुख संसार नूं वेखदा है, निरंकार नूं वेखदा है। एक तस्वीर दे के अगां चलांगे। एक दरखत दे थले पंज सत मनुख विश्राम कर रहे ने दोपहर दे वक्त। उना दे चों एक नृत्यकार है, एक संगीतकार है, एक उदासी संत है, एक नौजवान है जिड़ा हुणे किधरे घरों लड़के आया है, बड़ा दुखी है, बहुत बेचैन है। आराम कर रहे इन्हां मनुखां दे चों एक लक्कड़ दा वपारी है। हवा दे तेज झोंके जो दरखत नाल छूंदे ने, दरखत दियां टहणियां झूलदियां ने, जिहड़ा नृत्यकार सी वह नृत्य दी दुनिया विच खो जांदा है। वह कहिंदा है कि मैथों भी ज्यादा यह सुंदर दरखत नृत कर रहा है, इहदी शाखां विच कितनी लचक है, इहदे पत्ते किस ढंग नाल झूम रहे ने। नृत वेख के दरखत दा ओ नृतकार बिस्मात दी दुनिया च खो जांदा है, उहनू दरखत नचदा होया प्रतीत हुंदा है। दूसरा संगीतकार है, जद पवन दे तेज झोंके दरखत नाल स्पर्श करदे ने, शां शां दी आवाज बुलंद हुंदी है, ओ संगीतकार सरगम दी दुनिया च खो जांदा है, सुरां दी दुनिया च खो जांदा है, संगीत दी दुनिया च खो जांदा है, बिस्माद हो जांदा है। कहिंदा है सिर्फ मैं ही नहीं गाउंदा, यह दरख्त भी गाउंदा है, गीत संगीत इहदे विच्चों भी निकलदा है। नृत्यकार नूं ऐसा प्रतीत होया दरख्त नच रहा है, पर संगीतकार नूं ऐसा प्रतीत होया जैसे पत्ते पत्ते दे चों संगीत दा जन्म हो रहा है। उदासीन महात्मा लेटे होया है, वह देखदा है दरखत दी तरफ, एक सुक्का पत्ता तेज हवा दे झोंके नाल टुट के जमीन ते आ गिरदा है। अखां दे छंजू आ गए संत दे और कहिंदा एक दिन संसार दे दरख्त नालों मैं इस तरह टुट जावांगा जिवें के पत्ता टुटिया। जिवें हुण पत्ते दा जुड़ना इस दरख्त नाल बड़ा औखा है, तिवें मरे हुए मनुख दा मुड़ के कुटुंब संबंधियां नाल संसार नाल जुड़ना बहुत औखा है, बहुत औखा है। होर बैराग दी दुनिया च खो गया, होर संसार तो उपराम हो गया, बई इत्थे ते सारे पत्ते झड़ जांदे ने, इत्थे पत्ते सदीवी दरख्त नाल नहीं रहिंदे, एक एक करके सारियां नूं झड़ना पैणा है। इस वास्ते किसे परम खोज, किसे परम देश दी अंदर तलब रख के अगम्मी दुनिया विच खो गया ए संत। चौथा जो लेटे होया आराम कर रहा है इस दरखत दे थले, वह एक व्यापारी है लक्कड़ दा। वह इस सोचा दे गलतान हो गया कि इस दरखत नूं अगर मैं खरीद लवां, इहदे च इमारती लक्कड़ कितनी निकलेगी, इस दे च जलाऊ लक्कड़ कितनी होवेगी, और इस दे च जिहड़ा बाकी दा मलबा है शाखा इहदा कोला बन सकेगा कि नहीं, मैं किन्ने दा यह दरख्त खरीदा, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ
آرام

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष्य अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा आम संसारिक इंसान दा लक्ष्य की है, मनुख क्यों जी रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक विच बड़ा सुंदर चित्रण कीता है, तस्वीर कशी कीती है। आप फरमान कर देने दुनियावी मनुख संसारिक मनुख आम इंसान आदि आदमी खान ले जी रहा है, पीण ले जी रहा है, पहनन ले जी रहा है, मनोरंजन ले जी रहा है, परिवार ले जी रहा है, परिवारिक खुशियां ले जी रहा है और फिर जी रहा है सोण ले नींद। जीवन दा आखिर लक्ष्य की है, इस तो बिना होर कुछ लभना भी नहीं। खाना पीना पहनन जिंदगी दे चों कढ दई है। मनोरंजन दा सारा समान एक पासे कर दई है, परिवारिक खुशियां नूं बलाए ताकते रख दई है, ते नींद नूं भी एक पासे कर दई है, शायद मनुख अज ही खुदकशी कर लवे। आत्महत्या दी सोचे फिर मैं जीवां ही क्यों, किस लई जीवां। जीवना आम दुनियावी मनुखता बस इसे लई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी विच इना तमाम वस्तुआं दी प्रधानता नहीं सी, ना खान दी, ना पीण दी, ना पहनण दी। परिवारक कशिश भी नहीं सी, घरों निकले बारह बारह साल दी उदासी। जंगल दे रुखां थले होर मनोरंजन भी की हो सकदा सी, इंज कह लो सारे मनोरंजन नूं बलाए ताकते रखिया। किधरे मरुथल दा पेंडा, किधरे पहाड़ां ते भरमन सुमेर जोगियां कोल, किधरे तनहा बयाबान जंगलां विच रुखां दे थले वासा, जिसनूं आम दुनियावी मनुख मनोरंजन कहिंदा है, इह ते गुरु नानक दे नेड़े ही नहीं गए। परिवारक खुशियां ते नींद, इस सब कुछ नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बलाए ताक ते रख के दस दिता है, जीवन दा लक्ष्य सिर्फ एही नहीं है, जिंदगी दा मनोरथ सिर्फ एही नहीं है, कुछ और भी है। ए ठीक है कि इस सब कुछ तो बिना भी जीवना बड़ा औखा है, पर इस सब कुछ वास्ते जीवना भी कोई जीवना नहीं, ए जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। पावन पवित्र श्री राग दा ए पाक, इस दे चार पहरे ने, चार पदे ने, इंज कह लो चार पक्ष ने। जीवन इना चारां ले ही बतीत हो रहा है। प्रथम खाना है, और खाना दुनियावी मनुख दी सिर्फ शरीरक लोड़ नहीं, मन दी सोच नहीं है, मन दा चिंतन है, विचारां दिच खाना है, सोचनी दिच भोजन है। उठदा बैठदा पे है, याद भोजन दी चल रही है, खान दी चल रही है, लोड़ है या नहीं, सवेरे तो शाम तक चिंतन इसे रही चलता है।
और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिए है। कोई ना कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परचे और फिर परिवारक खुशियां चाहिए ने परिवारक सहमति चाहिए है और परिवार दे अपना होना इंज समझे जैसे परिवार दी लोड़ है और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने और फिर इस सब कुछ नू हंडांदा भोगदया होया मनुख चाहता है हुण मैं सौ जावा हुण मैनू चंगी नींद आवे हुण मैनू गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नू मनुख दी जिंदगी चो कढ दईए तो आम दुनियादार दी मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जांदा कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नू साफ कह दिता ऐ मेरे पुत्र नानक जे तुसी किधरे घर रहो तो मैं सोने सोने पकवान बना के थानू खिलावा और थानू खांदे आया वेख के मैनू खुशी होवे मैनू प्रसन्नता होवे। सिर्फ खान दी ही गल क्यों मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावा और खुद सिला के थानू पहनावा। सिर्फ इतना ही क्यों सुंदर घोड़ी उस ते उते मैं चांदी दी काठी पावा लगाम दे सोना जुड़िया होवे और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करा। फिर थोड़ा एक परिवार है परिवारिक खुशियां माणो फिर सुख दी नींद सोवा। ए उसनु आख्या जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद देच है हर वक्त आनंदी से जाते है हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है और जिसनु कहंदे ने ब्रह्मानंद जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है ए सारा सलाह मशवरा उसनु दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसी मनुख दी शिखर ते पहुंची है सुरत तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ ओ बोले है ओ दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे है। थले खड़े च खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है ओनू अनसुणा कीता है उसने जो शिखर ते खड़ा है जो बुलंदियां ते खड़ा है तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषां दा संसार विच आगमन अजाई चला गया अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले इतनी बुलंदी तो बोले जो थले खड़ विच खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं उदे सिर दे उपरों लंघिया उसका तालमेल ही ना बैठिया। उन्हें शायद एवं ही कोई गूंजदी हुई आवाज महसूस कर ली खास नहीं है और जो दो खड़ देच बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहे उदे बोलां देच भी खड़ सी जिथे उसका तन खड़ देच खला सी उसकी बोलनी भी खड़ नुमा सी बोल भी बड़े नीवे बोल भी बिल्कुल ही खड़ और उन्हां बोलां नू कोई मन लवे तो इंज है जिवे जिंदगी नू किसे खड़ देच गिराना होवे किसे गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नू परम पुरखा ने अनसुना कर दिता वांझी रह गई ए दुनिया उस महान बोला तो और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण आज तक नहीं हो सकया। नहीं थे कितने महापुरुष आए कितने अवतार आए लक्ष्य ते उन्हां दा एही सी कल्याण करना है कल्याण करना है। खड़ विच जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड़ नाली मोह पा बैठा सी गहरे गड्ढियां विच ही जीवन दा आदि हो गया सी उन्हें शिखरां नू छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ए सुपना ही मन लिया हकीकत नहीं हो सकदा
ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਅਵਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ